जोजोलपा थाउ नेपालसम्म चिन्छ सौ पी खुद गुण लागा त्रयोदशी थो रेडियो नेपाल ख अन्य नादिसँग जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार भोटे कोसी खुसी बा मिक झिङ्यानु ठ्याम्ब्ले मालेगु उदार ज्या याका तगुदु मिक जलविद्युतिया टनेले छमासिया सिम लुया वगु नेपाली सेना धागुदु छ खुसी बा केलाना सिपी मध्ये आतक झिन्सोसो खुइ खुमा व चिन्सो स खुइ खुमा स्या सिमा लुया वगु दुस आतक पेदो नेन हेमा मनुते गु स्वापु त्वा धला चुङ्गुदु प्रधान प्रहरी प्रधान कार्यालय मिग सार्वजनिक यागु लिपाङ धलकथ लुया वो पि सिमा मध्ये न्यास व सुई सोमा मिज सोस सुई छमा मिसा व न्यास व निगु सिमा या छुन छु अङ्ग जक लुया वगु दुसा लुया वगु सिमा मध्य आतक सचिव निमासिया सीमा थथिति पिन्ता ललाथुङ्क गुदु नेपाल प्रहरिया प्रवक्ता अभि नारायण काफ्रेया कथा अजन स्वापु मधुपी मध्य स्वदेशी पाखे निदो गुसौ हेमा मिज न्यासौ हेनिमा मिसापी दुसा अथेना विदेशी मनु तेगु पाखे निसौ खुइ गुमा मिज स्वसौ नि गुमा मिसा स्वापु बिहिन जुया चङ्गुदु खुसी बास लिचो लागु लाग्या तना चोपिता मालेगु उद्धार व सीमा व्यवस्थापन यता सुरक्षा निकाय मज्जिग निच्याका चोङ्गुदु लुया वगु सीमा मध्ये झिन छ स पिन हेम सीमा सुरक्षित कथ लागु दुसा अथियाना ल्याउँ दुपी सीमासिया मसिका व्यवस्थापन प्रक्रिया निच्याकाको प्रहरिया थापुदु खुसी बा लिपा आतक गुदो निसौ ङे पेमा घापा जुपिन्ता उदारिया गुदु उदारियापी मध्ये सोधो सुई मसित सुरक्षित कथ होल्डिङ सेन्टर रे तयातयागु प्रवक्ता काफ्रे जानकारी बियादि गुदु सातना चोपी मनोतेता मसिका ओ लुया वगु सीमा सनाखत याता डिएनए परीक्षण यता थ्याबिया त गुदु आतक सीमा मध्ये दोची निसव चे खुमा व सीमा थथिति याता झिम्पेस निनिमा चिनिमा याना निदो खुस गुई च्यामासिया डिएनए नमुना मुङ्कागु प्रहरिया थापुदु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामी छाने सडक ल्यामतेस न्यङ्गु न्यासालिस बिगु थासे थपिन्द नाचनागु ध्यादिगुदु सभापति लामी छाने विज्ञप्ति पाखे जेन्जी आन्दोलन छुन दल विशेष इनापे आन्दोलन जुगु मखु ध्यादिसे वैक्ला युपा नीति आवनिसे सुन माया मुले तया तपी मस्तेस ज्यान पा मलिगु जन प्यामवालीमा धका लसहना दिसे विधिया शासन व भ्रष्टाचार मुक्त समाज यता माग यासे जीवन पापी सकल सहित पिन्ता बिचाहाका दिल भोटेकोसी खुसी बासन लिचो भोटेकोसी खुसी बालन खापा जुपिन त त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज वासिया नीति हपी चेछमा मध्ये ङे हेमा डिस्चार्ज गुदु अस्पताल प्रवक्ता सर्जन डाक्टर गोपाल सेडाइया कथा वासा नीति हपी झिन्च्यामा मध्ये च्यामा झिन्च्यामासित अस्पताल प्रवक्ता सर्जन डाक्टर गोपाल सेडाई वासा नीति हपी झिन्च्यामा मध्ये झिन्च्यामासित वास जुई धुङ्क गुधागु दुस वास जुई धुङ्क पि घापा जुपिन्त सोमसित आइसियु निमासित हाई केयर यातायात गुदु अथियाना पेमासित मेगु अस्पताल वासा नीति छोयागु प्रवक्ता डाक्टर सेडाय कनादि गुदु अस्पताल हपिन छमा कापा जुमा मनुदास सी गुदु प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाह देशे सुशासन लेङ्का तेगु बचा पङ्का दि गुदु जेन्जी या सहित या लुमन्ती मिग भिन्तुना देशना देशे जेन्जी पुस्ता सुशासन लेङ्का तेमा धासे सहित पिन्ता बिचाहाका दिगु ख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामी छाने सडक ल्यामतेस न्याङ्गु न्यासे लिस बिगु थासे थपिन ठेनागु ध्यादिगुदु गृहमन्त्री सुदन गुरुङ जेन्जी आन्दोलन या सीमा सहितेगु मगस पुङ्केत सरकार प्रतिबद्ध चुयागु ध्यादिगुदु वङ्गु दया भदौ 23 गते जेन्जी आन्दोलन जुगु लुमन्ती स जेन्जी सहित छेज कल्याणकारी समाज तत्कालीन सङ्घीय संसद भवन हो बानेश्वरे मिग गोसा गगु ज्याजुले गृहमन्त्री गुरुङ देशे सुशासन लेङ्का त्यता भ्रष्टाचार हङ्केता सरकार ज्याना चुनागु ध्यादिल वेकला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सभापति रवि लामी छाने भलसा ट्याका जेन्जी आशा याता माका तेता सकल दि इना पेना दिल
उगु ज्या छोले कानुनिया तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम जेएनजे आन्दोलन या छगु जक एजेन्डा सुशासन यता बालक छेलेगु हसना जुगु कना दिगु दुसा उगु ज्या छोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या थिथि सांसद पिसा थथगु विचारना पापङ्का दिगु ख सभामुख डोल प्रसाद अर्याल खुसीबा चल स लिचोला पिन्त केन्द्र के तया राहत उद्धार व पुनस्थापना ज्या बान्लाक यायता इनापेना दिगुदु नुवाकोटे दुगु होल्डिङ सेन्टर रियात स्वेद हुङकानी सभामुख अर्याल राहत इने गुली छगु द्वार प्रणाली छेला स्थानीय तह या ओडा पाखे इने मागु बिचापङ्का दिल अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ने भोटे कोशी खुसी सन् दुकागु तत्कालीन भौतिक व मागु कथा या मूल्याङ्कन आरडिएनए या थल यथार्थ परक देखे त उजो ब्यादिगुदु मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग दे कगु छगु कार्यदल देखे धुङकानी तत्कालीन भौतिक क्षति व मागु कथा या मूल्याङ्कन आरडिएनए व विश्व बैङ्क दे कगु विश्वव्यापी विपद लिपा या क्षति अनुमान ग्रेट या ब्याग्लाम ब्याप्ल नापाङको मूल्याङ्कन विशेष सल या से वेक्न आएको विश्व बैङ्क या नेपाल प्रतिनिधि त्यता थुज्याको उज बियादिगु ख कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका एघार किम्रोङ छक्लन्त खुसिया बा डी ढुङ्कानी गाउँपालिका सतर्कता कघा त इनाप्यागुदु मिगसनी ल खुट्याट्या इलनिसे खुसी डी ढुङ्कानी लया बहा डिना चोङ्गु सुच स्थानीय पाखे वोगु गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर केसिङ कनादिगु ख चलवा छु कारण ख खुसी डिना चोङ्गु सिके मफुगु वेक्ल कनादिगुदु नेपाली कङ्ग्रेस या छिङ्याक गुमा अधिवेशन कथै या ओडा अधिवेशन वैगु असोज तिन गते निसे न्याइगु ज्यादलदु कङ्ग्रेस थोयान्ह भदौ 24 गते निसे न्याकेगु धागु ओडा अधिवेशन रचुवाया भोटेकोसी खुसी बास लागु लिचोया हुने लिज्यागु ख कङ्ग्रेस निर्वाचन समिति संयोजक प्रेम बहादुर खड्का मिग प्रेस विज्ञप्ति पाखे ओडा अधिवेशन असोज 3 र 4 गते या त सनागु जानकारी ब्यादिगु ख सा केन्द्रीय महाधिवेशन दास असोज 16 निसे 19 गते तक ये गोसा गुएगु सूचना ब्यादिगु ख भदौ 10 गते नेपाल व चिने बामलाक खुसीबान दुकागु हिमाली लागा हिमनदी दुन वे ह्य असाधारण कत तापक्रम उपगु केङ्गु मौसम नापान स्वापु दुगु तथ्याङ्क या छगु विश्लेषण धागुदु अनुसन्धानकर्ता या कथं भदौ 5 निसे 10 गते तक अथे न्यादो निशमिटर त जहागु हिमाली लागा औसत तापक्रम अथे न्यागु डिग्री सेल्सियस थ्याङ्गु अनुमान यागु दुथु तापक्रम असाधारण कथा थाहाङ्गु ख ने न्याद न्य तहागु मौसम या तथ्याङ्क कथा थुया न्य ओहे इले तापक्रम गुम्लेन पेङ्गु डिग्री सेल्सियस सिबे चुए मठ्याङ्गु धागु दु अथे जुसना थो तापक्रम हिमनदी दुहा वेगु दथि छु स्वापु दु मधु धासा सी मधुगु थागुदु क्यालिफोर्निया दुगु स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था ओर्क अर्थ या प्रमुख वैज्ञानिक रोबर्ट रो हडे थिथि मौसम नापा तथ्याङ्क या विश्लेषण याना थो असाधारण तापक्रम या पुनर्निर्माण याना दिगु ख युरोपेली संज्ञा कोपनिकर्स जलवायु ह्युपा सेवास 1970 थुकिया तथ्याङ्क विश्लेषण याबले लाङटाङ लाग्या थो झाँका जुगु रेकर्डे दुगु पेक्कगु फुक्कन सिबे कुवागु गर्मी या इ नापा मिले जुगु धागुदु खुसीबा लिपा विपद या इले सामाजिक सञ्जाल पाखे मामुदुगु हिना बिना याना सुच बिया सामाजिक सहिष्णुताके घा थ्याङ्किपी विरुद्ध प्रहरी सक्रिय जुगुदु नेपाल प्रहरी या सामाजिक सहिष्णुता घा लाकिपी मनुत्त नापा भिडियो जोल प्रसारण पोस्ट सेयर याना सामाजिक घृणा द्वेष व मामुदुगु हिना बिना यही पिन्त मसिका कारवाही यागु बच प्रहरी बिगुदु भोटे कोशी खुसी खुसीबा हुने रसुवागढी केरुङ नाका हान बन्द जुइथुङकानी मुस्ताङ भन्सार कार्यालय राजस्व सङ्कलने आप्ल उपगु ज्या जुया सङ्गु दुसा भन्सार कार्यालय या कथ थे भदौ 10 निसे 23 गते तक ए खुगु करोड राजस्व मुङ्गुदु रसुवा ओ तातोपानी नाका छक्लन्दु बन्द जुब्ले मुस्ताङ भन्सार कार्यालय जक वैकल्पिक नाका कथ जुया चङ्गु दुसा कोरोला जुसे नेपाल दुहा वैगु चे च्यागु मालवाह कन्टेनर सच्छी व सुइगु विद्युतीय सवारी इबिया भन्सार जाँचपास जुगु भन्सार प्रमुख विद्युत चुडाल जानकारी ब्यादिल नित झिङ्याग विद्युतीय सवारी व झिग माल
वस्तु पैठारी याना चुनागु कन्टेनर केरला सन् दुहा वुगु धागुदु भन्सार प्रमुख चुडाल्या कथ याना चोङ्गु आर्थिक द थुके साउन निसे भदौ 10 गते तक सचिव खुई स्वङ्ग विद्युतीय सवारी जोल सचिव सुई स्वङ्गु माल वस्तु कुबीगु कन्टेनर भन्सार जाँच पाँच यागुदु पिनु दुने ङेनिगु करोड चेगु लाख राजस्व मुङ्गु खसाथो भन्सार कार्यालय आतक छगु अर्ब चियागु करोड चेगु लाख राजस्व मुङ्कगुदु आर्थिक दन 2082-83 समुस्ताङ भन्सार खुगु अर्ब गुइनिगु करोड ढेबा मुङ्के दुङ्कगुदु संघीय संसदा निगु सदन या बैठक ठाउँ चोने त्यङ्गु दुन हिनेसिया छता अहिले सिंह दरबारे चोनेगु प्रतिनिधि सभा या बैठकले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सविता गौतम नेपाल कानुन आयोग नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 न्यवयादिगु गोसादु अथियाना बैठकले कानुन मन्त्री गौतम मेल मिलाप नापानिकगु संशोधन विधेयक 2083 दति विचायामा धेगु प्रस्ताव न्यवयादि अथियाना कानुन मन्त्री गौतम एसियाली विधायकी संस्था तेगु परिषद सदस्यता कागु नापाया प्रस्ताव सभा नापान्दुत बिगु ज्यादल दुगुन संघीय संसद सचिवालय धागुन हिनेसिया छता च्या इले टोनीगु राष्ट्र सभा बैठकले नेपाल विशेष सेवा एन 2042 साबिका व्यवस्थामा कि गुनापाया विधेयक 2083 नापाया समिति प्रतिवेदन दुत बी विधान व्यवस्थापन समिति सभापति कृष्ण बहादुर रोकायन थो प्रतिवेदन दुत बी गु ज्याधल दुसा अथियाना बैठकले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालय वोगु मन्त्री परिषद दुजया ज्याबला तोके याकु पौ या बेहोरा जानकारी ब्यादिगु ज्याचो दुस अथियाना अर्थ समिति उद्योग वाणिज्य व श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठक नचोनिगु घोषादु सुनसरी जुगु ब्याग्ला ब्याग्ला झाका खेलाना रेडियो नेपाल या प्राविधिक अधिकृत नापा निमा मनु सिगु दु दु हबी नगरपालिका 11 दुगु सिमर बना ताया दुनिया सडकके मोटरसाइकल झाका जुया गढी गाउँपालिका 2 या न्याङ्यादा दुमा प्रकाश लाल थान्दार सिगु खसा प्रहरिया कथ शुक्रबारे स नहर पाखे सोया वना चोङ्गु बास 75 प 3190 ल्याया मोटरसाइकल मङ्गलबार शनिल अथे नेता इजे झिगु मिनेटे अनन्त्री जुया तासँग अथे झिङ्याको मिटर कुहे कुतङ्गु ख तस्कङ खापा जुमा थान्दार या तवासा नेते विराट शिक्षण अस्पताल बुढी गङ्गा यङ्क गु इले लेसा सिकु धागु दुसा थान्दा रेडियो नेपाल तारिणी प्रसाद कोइराला स्मृति संसार ग्राम या प्राविधिक अधिकृत नापा ख वे क नापा परिचय पौ नापा लुयाउगु प्रहरिया धापुदु अथियाना कोशी राजमार्ग कथा धरान उपमहानगरपालिका 8 दुगु गुरास चोके मोटरसाइकल दिना तगु सिटी सफारी या त लिनेसा ठक्कर बिया इटहरी 5 या ङ्याङ्या त दुमा राजेन्द्र प्रसाद घिमिरे न सिगुदु पश्चिमसँग पूर्व पाखे सोया वया चोङ्गु 8 प 33 ल्याया मोटरसाइकलमा प्रदेश 1-02-004 ह 3504 नम्बर या सिटी सफारी या त मङ्गलबार हिने अथे निता इजुया पिङ्याको मिनेटे ठक्कर बि गुख तस्कङ घापा जोमा घिमिरे बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धराने वास्या झोले चाने हे सिगु प्रहरिया थापुदु नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नापा हापामा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर कोइराला बु दि थौँ देनियङ्क ठिची ज्याजो गोसा गया हना चङ्गुदु विक्रम सम्बत 1971 भदौ 24 गते जन्म जुमा कोइराला या जन्म जयन्ती लसता लाका नेपाली कङ्ग्रेस व पार्टी भातृ संगठन तेसन थौँ देनियङ्क ठिची ज्याजो गोसा गया हना चङ्गुदु आदेशम पिनिया बुख अमेरिका इरान दति लिपाङ्गु इले ओपया चोङ्गु हाठ्या व कचङ तचोगुदु अमेरिकी सेना इरान या न्याग चिकन ट्याङ्करे हमला यागु धागुदु अथियाना इरान अमेरिका दुविधा सुविधा पुङ्गु सुविधान जागु जहान हर्मुज लिक्क स नियन्त्रण कागु दुसा जहाज नियन्त्रण एकागु दुसा अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियो इरान अमेरिकी नौसैनिक जहाज यात आक्रमण यागु कुत न्याका तैबले तक्क बदलाया कथा इरानी चिकन ट्याङ्कर त्यता के काचो निको ख्याचो

पान्धागुदु मौसमी जानकारी थौ बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश या युगको थासे वा कोशी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश लागाया छुन थासे मलानापा लाप्सा तोय वा वैगु सुदूरपश्चिम प्रदेश तराई लागाया मोह थासे वा लियोन्दुगु तराई लागाया छुन थासे मलानापा लाप्सा तोय पतिचा तस्कौ वा वैगु सम्भावना दुसा मधेस प्रदेश कोशी लुम्बिनी प्रदेश या पहाडी वा तराई लागाया बागमती गण्डकी प्रदेश या हिमाली पहाडी हो तराई लागाया छगुनीगु थासे आप्लाउँ वा वैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापुदु वङ्गु नि पे घौस ये या क्वाज नि गुगु फुटी सोङ्गु डिग्री सेल्सियस जति चोनादासा थौ ये सोनि गया क्वाज नि हेगु निसे नि गुगु डिग्री सेल्सियस जति चोनि थौ सुते ये सोनि गया या ये सोनि गले या त इजु या पि गुमिनेटे लुया वगु सूर्य शनि ल खुता इजु या निछगुमिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन छिता अहिले नेपाली भाषा समाचार नेनादिसा सुभा

ई रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झा से सुनल जा मैथिली भाषा में समाचार। प्रतिनिधि सभा में नेपाल कानून आयोग पहल संशोधन विधेयक 2083 प्रस्तुत भेल। सभा के आजक बैठक में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुभिता गौतम ई विधेयक प्रस्तुत कलन। इससे पहले मंत्री गौतम अ विधेयक के प्रस्तुत करवाक लेल अनुमति मांगा संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत कने चले। सभामुख डोल प्रसाद आर्याल अ प्रस्ताव पर कोनो विरोध के सूचना प्राप्त नहीं भेल जानकारी करौलन। वही पश्चात मंत्री गौतम ई विधेयक सभा में प्रस्तुत कलन। विधेयक प्रस्तुत करत मंत्री नेपाल कानून आयोग के कानून तर्जुमा कानून संबंधी अध्ययन अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट निकाय सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकास करवाक लेल मौजूदा कानून पर्याप्त भेला सा आयोग के संरचना आ कार्य क्षेत्र में आवश्यक परिमार्जन का समग्र कार्य संपादन के स्तर सुधार करब मौजूदा एन संशोधन करवाक विधेयक आना पड़ल स्पष्ट कलन। ऐसे पहले बैठक में सभामुख आर्याल प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय से प्राप्त कार्यभार थप संबंधी पत्र की पढ़कर सुनौने छले। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछा ने बाढ़ से प्रभावित नागरिक के आक्रोश के सरकार विरुद्ध के प्रहार के रूप में नहीं ल राज्य प्रति के अपेक्षा अंतिम गुहार के संबंध में बुझबाक चाही बतौलन। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक में समय लक बजित सभापति लामिछा ने विपत्ति में पड़ल नागरिक ऊपर सामाजिक संजाल मार्फत टिप्पणी कटाक्ष व साइबर बुलिंग नहीं करबाक लेल आग्रह कलन। भादो 10 गति रसुआ के भूटे कोसी होत आयल विनाशकारी बाढ़ के केवल प्राकृतिक विपत्ति मात्र निभत जलवायु अन्याय के परिणाम के रूप में लक विश्व स्तर में प्रभावकारी पहल करबाक लेल सरकार संग वो आग्रह कलन। बाढ़ में मृत्यु भेल तथा बेपत्ता नागरिक प्रति श्रद्धांजलि आ बाढ़ पीड़ित परिवार प्रति संवेदना प्रकट करत सभापति लामिछा ने विपत्त में पड़ल नागरिक के उद्धार अखनो जारी रहल सुखद समाचार के आशा करबाक चाही बतौलन। जलवायु परिवर्तन में नेपाल के योगदान नगण्य भेल बावजूदो अ के गंभीर असर नेपाली नागरिक भोग रहल प्रसंग चर्च करत सभापति लामिछा ने जलवायु परिवर्तन के कारण होवे वाला क्षति के न्यायोचित अंतर्राष्ट्रीय संबोधन होब आवश्यक रहल बतौलन। ओ विपत्त में मृत्यु भेल नागरिक के प्राकृतिक विपत्ति के सामान्य मृतक के रूप में नहीं देखबाक चाही धारणा रखलन। अभादो 10 गति बाढ़ पश्चात सत्तारूढ़ दल रासपा के सभापति लामिछा ने संसद में समय लगा प्राकृतिक विपत्ति के सामना के लिए पहल बेर संबोधन करने छले। आजुक बैठक में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह नेकपा के संयोजक एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड लगायत नेतागण के उपस्थिति छल। राष्ट्रसभा के सांसद सब भोटे कोसी बाढ़ लगले उद्धार के लिए आब लागल विदेशी विज्ञ प्राविधिक सब के सरकार अनुमति नहीं दिला से मानवीय क्षति बढ़ल बतौलन। बैठक में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के सांसद डॉक्टर प्रेम प्रसाद दंगाल भोटे कोसी बाढ़ में पड़ल सबके खोज तथा उद्धारक लेल अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से प्राविधिक उद्धार खोजकर्ता गोताखोर सब सेहो आयल प्रतिबद्धता के सरकार अस्वीकार कला से सुरुग में फसल सयों मजदूर के जान गेल जिमा ई सरकार के लिए पड़त बतौलन। बैठक में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारी भोटे कोशी में आयल विनाशकारी बाढ़ में हरा रहल 5,000 से अधिक व्यक्ति सबके खोजी कार्य तीव्र बनाब सरकार के आग्रह कलन। अना का नेपाल कांग्रेस के सांसद पदम बहादुर परिया सरकार परिवर्तन होब सहज भेल बावजूदो शासन के चरित्र परिवर्तन होब कठिन होन बतौलन। अना का जनता समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद खालिद बाढ़ से विस्थापित सबके वैज्ञानिक पुनर्वास और रोजगारी सरकार के दायित्व हेबाक बतौलन। वो दैनिक 1,00,000 गैस सिलेंडर मांग भ रहल समय 30,000 मात्र आपूर्ति भेला से नेपाली के भानस में सेहो समस्या भेल कहत सांसद खालिद सरकार मूल वृद्धि नियंत्रण आ युवा के रोजगारी देव नहीं सकल बतौलन। बैठक में राष्ट्रीय जनमोर्चा के सांसद तुल प्रसाद विश्वकर्मा विपद में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सशर्त घोषणा कैल गेल सहयोग स्वीकार नहीं करबाक चाही पर जोर दलन। बैठक में सांसद सब ललित जंग शाही रेणु चंद गीता देवकुटा किरण बाबू श्रेष्ठ गत भादो 23 गते जयंती स्मृति दिवस मनोन स्मरण करत भादो 14 के नहीं बिसरबाक चाही बतौलन। वो सब भादो 24 गते के सत्य तथ्य पता लगाकर दोषी के कार्रवाई करबाक लेल सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन। ऐसे पहले बैठक में सांसद सब समसामयिक विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छले। बैठक में राष्ट्रसभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय से प्राप्त मंत्रिपरिषद सदस्य के कार्यभार तोकल गेल संबंधी पत्र पढ़ कर सुनौले। अना का विधान व्यवस्थापन समिति के सभापति कृष्ण बहादुर रोकाय प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 के साबिक
के व्यवस्था जगेबाक संबंधी विधेयक 2083 संबंधी समिति के प्रतिवेदन सभा में पेश कलन। राष्ट्रसभा के दोसर बैठक 25 गते बृहस्पति दिन सभा 1 बजे बैसत। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भोटेकोसी बाढ़ प्रभावित सबके तत्काल व्यवस्थापन, सड़क यातायात संचालन सहित पुनर्निर्माण आ पुनर्स्थापना लगायत के काज के तीव्रता देव सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन। ओ भौगोलिक विकटता के ध्यान में रखे सड़क यातायात संचालन में क्षमता से नहीं भेल त बड़का बेली ब्रिज सहित के पूर्वाधार निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग सेहो लेबल लेल सुझाव दिलन। संगे ओ जलवायु परिवर्तन के कारण से नेपाल के भोगा पड़ल क्षति के क्षतिपूर्ति भेटवासन प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समक्ष आवाज उठेबाक चाहिए सेहो सुझाव दिलन। राष्ट्रपति पौडेल पर राष्ट्रमंत्री शिशिर खनाल आ पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल संग राष्ट्रीय भवन शीतल निवास में आई अलगे अलगे विचार विमर्श कर सड़क यातायात संचालन एवं बाढ़ भूस्खलन के कारण बसोबास के लिए होल्डिंग सेंटर व्यवस्थापन के काज के तीव्रता देबाक लेल आग्रह कलन। राष्ट्रपति पौडेल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जनजीवन सहज आ सरल बनाबा तत्काल के काज के प्राथमिकता देबा लेल आग्रह कलन। मंत्री खनाल संघ के भेंट में प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी आ प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल सहभागी छले थे। एहि अवसर पर मंत्री द्वय दशई से पहिने ही सड़क यातायात पूर्व रूप से संचालन करबाक तथा बाढ़ प्रभावित नागरिक के बसोबासक लेल अस्थायी घर निर्माण कॉलेब सन दिन रात काज भ रहा जानकारी दिलन। अना मंत्री सब वैकल्पिक सड़क निर्माण कार्य के सरकार तीव्रता देने आ लंबा लंबा बेली ब्रिज के लिए रविन्द्र राष्ट्र सब संग आग्रह कह चुकल तथा ई सामग्री सब आवक क्रम में रहा अन्य आवश्यक योजना सरकार आगू बढ़ौने जानकारी राष्ट्रपति के करौने छले थे। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल संग नेपालक लेल श्रीलंका के राजदूत रुवांथी डेलपिटिया शिष्टाचार भेंट वार्ता कलने। परराष्ट्र मंत्रालय में आई भेल भेंट में राजदूत डेलपिटिया अखन के विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित नेपाल के लेल श्रीलंका सरकार के दिशा 10 लाख अमेरिकी डॉलर आर्थिक सहयोग हस्तांतरण कलन। एहि अवसर पर राजदूत डेलपिटिया बाढ़िक कारण भेल जनधन तथा पूर्वाधार के क्षतिप्रति श्रीलंका सरकार आ जनता के दिश से दुख व्यक्त करत नेपाल सरकार आ नेपाली प्रति एकबद्धता प्रकट कलन। ओ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जारी मानवीय सहायता तथा राहत प्रयास में सहयोग पहुंचेबाक उद्देश्य के संग श्रीलंका सरकार से प्राप्त कैल गेल आर्थिक सहयोग परराष्ट्र मंत्री खनाल के हस्तांतरण कलन। एहि अवसर पर परराष्ट्र मंत्री खनाल विपद के कठिन समय में नेपाल प्रति एकबद्धता सहयोग व्यक्त करबाक संगे राहत तथा मानवीय प्रयास के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध करायल गेल प्रति श्रीलंका सरकार ओतुका जनता प्रति कृतज्ञता व्यक्त कलन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी यादव उपभोक्ता कोनो कंपनी के खाली गैस सिलेंडर अन्य बावजूदो गैस भर के उपलब्ध करेबाक व्यवस्था करबाक लेल नेपाल आयल निगम के निर्देशन दिलिए। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के आई बैसल बैठक में मंत्री यादव इन निर्देशन के उल्लंघन कैने भेटल गेला पर प्रचलित कानून बमोजिम कार्रवाई हाथ से बतौलन। बैठक में मंत्री यादव पठायल गेल गैस सिलेंडर मध्य किछ बाजार में नहीं पहुँचल विषय में अनुगमन कैला पर स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो नहीं सकल प्रति आपत्ति जनबत नेपाल आयल निगम अपन माथ हाथ में गैस उद्योग संचालन करबाक लेल आवश्यक पहल करबाक चाही पर जोर दिलन। मंत्री यादव तेल गैस लत्ता कपड़ा खाद्यान्न आ चीनी में देश के आत्मनिर्भर बनाबा आवश्यक कदम उठेबाक चाही सेहो बतौलन। बैठक में पावन तिहार के समय में आम नागरिक तथा विद्यार्थी के गैस के अभाव भ रहला सा असहजता रोक लेल गैस के आपूर्ति वितरण आ मौजदात के प्रभावकारी अनुगमन आ कालाबाजारी नियंत्रण करबाक सांसद सब के बतौलन। अहिना सांसद सब के लेरकोरी महिला लगायत सर्वसाधारण के लंबा समय धरि लाइन में रह कर रकम तीर के लेल तैयार होतु गैस नहीं भेटे के अवस्था चिंताजनक रहल बतावित विद्युतीय चूल्ह के प्रवर्धन आ गैस सिलेंडर के वर्चुअल ट्रैकिंग प्रणाली आगू बढ़ेबाक चाही पर जोर दिलन। प्रधानमंत्री राहत कोष में लगभग 12 अरब टका जमा भेल। भोटेकोसी नदी में आयल बाढ़ के बाद राहत उद्धारक लेल आह्वान कैल गेल। प्रधानमंत्री राहत कोष में 11,98,97,86,84 मौजदात रहल प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय जनौलक। कोष में जमा भेल नगद मध्य 9 वाणिज्य बैंक के खाता में 8,78,82,58,304 मौजदात है। तहिना 2 वाणिज्य बैंक में 2,11,43,427 अमेरिकी डॉलर मौजदात रहल है। एहि कोष से 1 अरब टका राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण में निकासा भ चुकल है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भोटेकोशी बाढ़ प्रभावितों के पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार का कराया ध्यानाकर्षण। बाढ़ प्रभावितों के आक्रोश को राज्य से उनकी अपेक्षा के रूप में लेना चाहिए, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सभापति रवि लामेछाने का कथन। भोटेकोशी बाढ़ में मारे गए लोगों में से अब तक 1372 शव किए गए बरामद और अमेरिका और ईरान के बीच 6 महीने के बाद फिर शुरू हुए युद्ध के कारण एशियाई बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भोटेकोशी बाढ़ प्रभावितों के तत्काल प्रबंधन, सड़क एवं यातायात संचालन के साथ ही पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना सहित अन्य कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार का ध्यानाकर्षण कराया है। राष्ट्रपति पौडेल ने आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल और पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल के साथ अलग अलग बैठक कर सड़क यातायात संचालन तथा बाढ़ प्रभावितों के आवास के लिए होल्डिंग सेंटर के प्रबंधन कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने भौगोलिक विकटता को ध्यान में रखते हुए सड़क यातायात संचालन में क्षमता से अधिक चुनौती होने पर बड़े बेली ब्रिज सहित आवश्यक पूर्वाधार के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी सहयोग लेने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आवाज उठाने का सुझाव दिया। बैठक में मंत्री खनाल और लम्साल ने जानकारी दी कि दशहरे से पहले ही सड़क यातायात को पूर्ववत संचालित करने तथा बाढ़ प्रभावित नागरिकों के आवास के लिए अस्थायी कैप्सूल होम का निर्माण पूरा करने के उद्देश्य से दिन रात काम किया जा रहा है। इसी तरह उन्होंने बताया कि सरकार ने वैकल्पिक सड़क निर्माण कार्य को तेज कर दिया है। लंबे बेली ब्रिज के लिए मित्र राष्ट्रों से आग्रह किया जा चुका है और आवश्यक सामग्री आने की प्रक्रिया में है। साथ ही सरकार ने अन्य आवश्यक योजनाओं को भी आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सभापति रवि लामेछाने ने आपदा के समय जलवायु न्याय के लिए सभी राजनीतिक दलों से विश्व समुदाय के सामने एकजुट होकर खड़े होने का आग्रह किया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपदा के समय सत्ता पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता और मानवता के आधार पर सभी को एकजुट होना चाहिए। लामेछाने ने भाद्र 10 की बाढ़ में मारे गए लोगों को केवल प्राकृतिक आपदा के पीड़ित नहीं बल्कि जलवायु न्याय के पीड़ित बताया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं होने के बावजूद इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाने वाले निर्दोष लोगों को मानव सभ्यता को विशेष सम्मान देना चाहिए। उन्होंने सरकार के बचाव और खोज अभियान की सराहना करते हुए सुरक्षित संरचना और मजबूत पूर्व तैयारी पर जोर दिया। बैठक में सांसदों ने जेनजी आंदोलन के 1 वर्ष बाद उसके समझौतों और मांगों को पूरा करने, बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क पुलों की मरम्मत तथा गैस की कमी की समस्या समाधान के लिए सरकार को गंभीरता से काम करने का आग्रह किया। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सोविता गौतम ने कहा कि दोनों पक्षों की जीत सुनिश्चित करने और अदालतों में मामलों का बोझ कम करने के लिए मेल मिलाप संबंधी विधेयक में संशोधन किया जा रहा है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में उन्होंने कहा कि मेल मिलाप से दोनों पक्षों का खर्च कम होगा, जल्दी और सरल तरीके से न्याय मिलेगा तथा विवाद के बाद लंबे समय तक कटुता भी नहीं रहेगी। कानून द्वारा निषेधित मामलों में मेल मिलाप नहीं किया जाएगा। सांसदों ने भी सामुदायिक मेल मिलाप को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई, लेकिन इसे बाध्यकारी नहीं बनाने पर जोर दिया। विधायक को बहुमत से विचार के लिए स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त नेपाल विशेष सेवा आयन 2042 की पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू करने संबंधी विधेयक 2083 पर समिति की रिपोर्ट पेश की गई। विधायन प्रबंधन समिति के सभापति कृष्ण बहादुर रोकाया ने विधेयक पर दफावार चर्चा सहित रिपोर्ट सदन में पेश की। बैठक के विशेष समय में सांसदों ने भोटेकोशी बाढ़ के तुरंत बाद बचाव के लिए आने वाले विदेशी विशेषज्ञों और तकनीकी कर्मचारियों को सरकार
सरकार द्वारा अनुमति न दिए जाने से मानवीय क्षति बढ़ने का आरोप लगाया। सांसदों ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को सफल बनाने, जेएनजी आंदोलन की उपलब्धियों को संस्थागत करने तथा बाढ़ प्रभावितों के राहत बचाव और पुनर्स्थापना कार्य को प्रभावी बनाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। शून्य समय में भी सांसदों ने भोटीकोशी बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत और प्रभावी पुनर्स्थापना तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने की मांग की। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री बालिंदर शाह ने तीनों सुरक्षा निकायों के प्रमुखों के साथ चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने इसी भादो 10 गते रसुआ के भोटीकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद उत्पन्न स्थिति, समग्र खोज, बचाव, राहत वितरण और उपचार समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की। ये जानकारी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने दी। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री शाह ने आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।

0: सेवा प्राप्त गरौँ।
1: प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट सजिलै नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
2: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
3: अब बाँकी समाचार। रसुवा के भोटेकोशी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण अब तक 1372 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। ये जानकारी नेपाल पुलिस ने दी। बरामद शवों की पहचान के लिए डीएनए नमूना संकलन सहित आवश्यक प्रक्रिया पूरा कर अब तक 1148 शवों को सुरक्षित रूप से दफनाया गया है। इसी तरह शवों की पहचान के लिए मृतकों के 1286 और उनके परिजनों के 1412 सहित कुल 2698 डीएनए नमूने संकलन किए गए हैं। पहचान न हो सके 1295 शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। इसी बीच बाढ़ के कारण प्रभावित 13583 लोगों का अब तक उद्धार किया गया है। वहीं बाढ़ के बाद लापता हुए 4077 लोगों की तलाश जारी है। ये जानकारी नेपाल पुलिस ने दी। प्रतिनिधि सभा की अर्थ समिति की आज की बैठक ने रसुआ बाढ़ से अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव और जलवायु वित्त का अध्ययन एवं विश्लेषण कर आश्विन 2 कते तक सुझाव सहित रिपोर्ट पेश करने के लिए 7 सदस्यीय उप समिति का गठन किया है। सांसद सुशील खड़का की संयोजक में गठित उप समिति में 7 सदस्य हैं। बैठक में राष्ट्रीय योजना आयोग, अर्थ मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अधिकारियों ने बाढ़ के बाद सरकार द्वारा किए गए बचाव, राहत और पुनर्स्थापना कार्यों तथा अर्थव्यवस्था पर पड़े नुकसान के बारे में समिति को जानकारी दी। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल से नेपाल के लिए श्रीलंका की राजू तुरुवांथी डेली पीटिया ने मुलाकात की है। परराष्ट्र मंत्रालय में आज हुई मुलाकात के दौरान राजदूत डेली पीटिया ने हाल ही विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित नेपाल के लिए श्रीलंका सरकार की ओर से 10 लाख अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता हस्तांतरित की। इस अवसर पर राजदूत ने बाढ़ से हुई जनधन की और बुनियादी ढांचे की क्षति पर श्रीलंका सरकार और जनता की ओर से दुख व्यक्त करते हुए नेपाल सरकार और नेपाली जनता के प्रति एकजुटता प्रकट की। परराष्ट्र मंत्री खनाल ने कठिन समय में नेपाल के प्रति एकजुटता और सहयोग व्यक्त करने तथा राहत एवं मानवीय प्रयासों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर श्रीलंका सरकार और जनता के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी यादव ने नेपाल आयल निगम को निर्देश दिया है कि उपभोक्ता किसी भी कंपनी का खाली गैस सिलेंडर लाए उसे गैस भरकर उपलब्ध कराया जाए। निर्देश का उल्लंघन होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्री यादव ने गैस की आपूर्ति में पारदर्शिता लाने तथा तेल, गैस, कपड़े, खाद्यान्न और चीनी में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। बैठक में सांसदों ने त्योहारों के दौरान गैस की कमी रोकने, आपूर्ति और भंडारण की प्रभावी निगरानी तथा कालाबाजारी नियंत्रण की मांग की। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिकल चूल्हे को बढ़ावा देने और गैस सिलेंडरों की वर्चुअल ट्रैकिंग प्रणाली लागू करने पर भी जोर दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच करीब 6 महीने से जारी संघर्ष फिर से तेज होने के बाद एशियाई बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत पहली बार जुलाई के बाद $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। एशियाई कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड करीब $100.20 प्रति बैरल तक पहुंचा, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI की कीमत करीब $95 प्रति बैरल रही। अगस्त की शुरुआत से ब्रेंट की कीमत करीब 25% बढ़ चुकी है। तेल की कीमत बढ़ने का मुख्य कारण मध्य पूर्व से तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। अमेरिका ने हाल में 5 ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने और खाड़ी क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाया। ईरान समर्थित हूती समूह के सऊदी अरब के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमलों ने भी बाजार की चिंता बढ़ाई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भोटिकोशी बाढ़ प्रभावितों के पुनर्स्थापन और पुनः निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार का कराया ध्यानाकर्षण। बाढ़ प्रभावितों के आक्रोश को राज्य से उनकी अपेक्षा के रूप में लेना चाहिए, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के सभापति रवि लामिछाने का कथन। भोटिकोशी बाढ़ में मारे गए लोगों में से अब तक 1372 शव किए गए बरामद। और अमेरिका और ईरान के बीच 6 महीने बाद फिर शुरू हुए युद्ध के कारण एशियाई बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। रेडियो नेपाल से प्रसारित 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।

वहमो गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: रेडियो नेपाल नयाँ नेपालको समावेशी आवाज राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार
1: I'm sorry mummy मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई मुझे प्लीज माफ कर दो
2: इट्स ओवर अब सब कुछ खत्म हो चुका है शायद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती

जग व्यापक राधा, सब उर पुर रह राधा, सब पर करुणा राधा, जय जय कृपालु राधा। लादिनी शक्ति रूपा, जड़ चेतन संपूर्ण जगत में व्याप्त, सब जीवात्मा को हृदय में नित्य निवास करी, सब माथी बराबर करुणा करने, हे कृपामयी राधे, हजुर को सदा जय होस। नित्य किशोरी श्री कृष्ण प्राण प्रिया श्री राधा रानी का पावन कोमल चरण को सभक्ति स्मरण करते कार्यक्रम अध्यात्म संदेश द्वारा बिहानी को सत्संग को प्रतीक्षा में रहनुभएका आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरूलाई कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं राधे राधे को अभिवादन।